0: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.
1: C'est une vieille histoire. La relation de l'homme à la nature et aux animaux domestiqués en est pleine. C'est les histoires du cheval, un animal qui, depuis des millénaires, accompagne l'homme dans son travail, ses voyages, ses combats et des guerres aussi. Un compagnon à qui beaucoup de peuples ont rendu hommage. Des histoires chevaleresques, mythiques ou liées au quotidien nous amènent dans un pèlerinage proche et lointain à la fois.
2: Ah, or ghoda re ja rajiyan khayan ke ma e toranjar bilu me e kesar ghodi mata kaal me dev narayan ki bawli ghodi ho gaya gham ghodi aswar to ghodi par chand pura ar babu ji ki jaan ke ma ne padarya aur dema ji ko ghodo hadma charan ko be par chand pura ar demo ji khinchon ladai karba gaya रामदेव जी को घोड़ो शेतलो सफेद बीक पर कर सवारी अर पाबू जी की जान के मायने पधारया और जाइल के खींची को जल घोड़ो बी पर चढ़ परा अरण भारत के मायने खींची झगड़ो करवा गया। अब पाबू जी की कहानी